0: whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babata day.
1: पांच मरद एक जो, अरे कोई देखेगा तो थूकेगा तुम लोगों पर। ऐसा करो ये चूड़ियां पहन लो, मामला लेवल हो जाए।
2: हर इंडियन पिक्चर में ऐसा ही होता है।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, नीना, अंजू, मंजू या

0: And the winner is...
1: It was going to be... It was going forward towards a draw, but it didn't happen in the end. Suddenly, one just shot ahead.
2: Listener's Choice, brought to you by Star Plus.
3: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
4: Watch India's top 1% tonight at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
5: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं.

0: Perry presents Jubin Nautiyal live in concert. On the 12th of December, Mattioli Arena, Leicester. 13th of December, OVO Arena, Wembley. Tickets available now on Ticketmaster and AXS. In association with Berico Food Distribution Limited and PRC Direct. Don't miss your chance to witness the voice that is Jubin Nautiyal. Radio partner, Sunrise Radio.
1: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
2: मैं बेटे के लिए justice चाहिए.
3: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
2: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinemas now.
2: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Released nationwide by Zee Studios.
4: There's a moment right before The Lion King starts where the whole audience holds its breath. It lives in that moment. It lives in the rhythm of the Pride Lands and the heart of this city. It lives in the legacy, the connection, the wonder. Disney's The Lion King. It lives in you. At London's Lyceum Theatre.
5: स्वागत है आप सभी का मेरे दर्शकों और चाहने वालों दिवाली के अवसर पे खेलो और जीतो गेम में। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, धनतेरस में हर घर में क्या खरीदा जाता है?
6: गोल्ड।
5: और ये बिल्कुल सही जवाब लगे। तो ये भी बता दीजिए कि गोल्ड खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
6: गोल्ड बैंक।
5: अद्भुत असामान्य, बिल्कुल सही जवाब। अरे इससे पहले कि देर हो जाए, जल्दी से गोल्ड बैंक चाहिए और जी भर के सोना खरीदिए।
7: विजिट द गोल्ड बैंक दिस धनतेरस एंड दिवाली, 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, 0203 500 1111, goldbank.co.uk.
8: This Halloween, you'd be bats to go anywhere other than Aldi. There's everything from Cadbury's Heroes to Swizzle Sweet Tubs and British Pumpkins, perfect for carving. Sink your fangs into trick-or-treat essentials from 39p. So, after dark, fly to Aldi! Yeah!
9: This is Sunrise, the UK's biggest. Mix.

0: can't believe they got rid of him.
1: Surely that's going to give her away.
0: Yeah.
1: Or will it?
0: You were right last week.
2: Nothing brings us together like great TV. And the TV licence covers you to watch all TV channels plus BBC iPlayer. So you can revel in all the devious mind games. Search TV licence together.
3: Dosto, aap sabhi ka swagat hai Khelo aur Jeeto ke mega episode mein. बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
4: जी पाजी।
3: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
4: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूँगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूँगा।
3: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
5: हेलो
4: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
5: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है यार, गोल्ड बैंक।
4: सर जी, आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
3: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर। सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय,
6: visit the Gold Bank, 215 the Broadway, Southall, 0203 500 1111, goldbank.co.uk.
7: This Halloween at Lidl, we won't be beaten on price on our pumpkins. We've got munchkin pumpkins, medium pumpkins, large pumpkins,
8: and even monster pumpkins.
7: Get yours in store now. Lidl, more to value.
9: Price match in most major supermarkets till 31st of the 10th. See lidl.co.uk/spendless. Selected stores while stocks last, exclusions apply.
10: This is the UK's biggest
11: Asian
10: mix.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: to move in with him.
1: I mean, you practically live with each other already, but that's great. Did you hear that, Joe?
2: Yes, thanks for letting us know. I see you've updated your universal credit claim. Now you're going to be living together.
3: If you've moved in together, taken on more clients, or inherited some money, it can affect your universal credit. If you're telling someone else, tell us too. Search Tell DWP.
4: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल भेजने की सबसे सही जगह कौन सी है?
5: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
4: जी बिल्कुल।
6: शबनम, इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
5: हाँ, मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है, गोल्ड बैंक।
4: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
5: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
4: बिल्कुल, आप ऑडियंस पूछ ले सकती है।
7: गोल्ड बैंक।
5: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
4: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
8: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
9: Sunrise Radio। Happy birthday to one of the greatest and most accomplished actors in Indian cinema, Amitabh Bachchan. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate together with a cake from the Cake Box.
10: Birthday greetings from Cake Box. New from Cake Box. Nationwide delivery is here. Send a personalized cake to someone special anywhere across the country. And right now, delivery is free for a limited time until the end of October. Cake Box celebrations. Now delivered nationwide. Order at cakebox.com.
11: Coming up, is it going to be a botch or watch? But first, it's Musla with Neha Kakkar and Singster and the UK's biggest Asia Mix. You're listening to Nant.

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल care.com.
2: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
3: This is Sunrise, the UK's biggest.

परास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।